तुमडायु धयुन तेहनी मीनी का शल्ल दिल हफ्ते का तीन आदाई था तिब्दाते ना शल्ल तुम आगना हुआ तू न तुम आगुआ तिलहन नहीं हुआ उन अम आगना का शल्ल तेती रोकना हिनिन उन हमसे हो हदी दाने दे तू न इन अमराद हुआ ते तिलहन इन बते आन मीन का ओ दे इदा इन तिम बते हो कक इन बते यान हंकाई कक हंकाई भी कतिम ने बंदे थाया अन्य मियादी इन बलिब दियो कने उधायुम तो बिडावी उन उकासन उन बिने आदम अखलगियत इदियत इतकुकत हा ए अनु उन बशरी व उत अदेती व अलमना ए अदनेन गुबे उन बशरी व तदेती व दिया उन गुबे उन तदेती वे फम बरु ककना ने बारे तिंदिए उन गुबे उन बरु इन इमरात इद इंतेन जरासिम यदने व फैरूसा यदने व बैक्टीरिया यदने न व इन बता ये नो इमोट हारावीन उन उन उगुबे उंबरु बरे हारावेतित इमोट उन दा उंबरुक तिलहने होय शिकतिंदे कोय व इशिलक न तिंदे उन उगुबे वल्ला उकासन हियाव के कति उंबरु कक तिस अकीराया कक दाई था ति दन्य उंबतु तो सकरोय उगुबे दिया तिंदे ओब कक दन्य तो सकरोय उन उगुबे तुम अरे तु दाई तमतिनी तेना ति सवाल तिनीन आ ते तेना ते दाई तुम अरे तु दाई बेते गबल की दहो हदीदना सूर्य दबा भो हदीदाबा तेन ते दाई कस्ते गाथा गात मरी ती दगेरे की तई हाया ते तुम अरे तकरात ओन ओगुबे इस अकरत इन बते तम तिनिया तोश ते कतिएक ते खुदरा वे कतीने सलाता ते कतिएक आं ते फवाके कतीने ते तेन इन बते गार नाती दगेरे बा है कस्ते इन बते ओ गुत्तिनिया अरे तव्वा ते आव्वा ते मलुकुआ तेन इन बते तुम अरे तमती बोदोर हो गुत्ते ने उन दा उन था आती बरु उन ओग बे बरो सकरा ते कहती ओग बे अंकीरो तिलहा नहीं इशालिकन बरु अकरा का बेकती अब का अमोटे का बेकती इतने न तीने ने जरासे मुआ मिक्रोबा वने दे बिंबरे दाए फिन इमोटे तू न तूरा उनाना तू तिंदिए इन्हें उन मराकिजे हुआ मुस्तशफाए हुआ इरावे हुआ तहसीन एदने न तेह तासी नाना तो तिंदियक जुरात इन इन सिरिका ददिस अके एउनेत एफिं इन बता कक साकें तिंदियक अम बता उन ओगुबे ओराओ कक ओगुबे ओराओ तिंदियक अम बारा मरादा एफिं ये नुकताने हरी मल्लम हेल बाबर इने हैं अश्लल एदने अल्लाह अश्लल हम भी ओकना तेतुनुस एदने हुआ असुल एदने हुआ आन इन बरे कस्से अलकतकोत एदने हुआ الدفتري يدني تو ام باتي كاستي ايموتي اهن تحسين يدني نسريكا دبنوا ابكا ايوني اهن مستشفى او مراكز وينك ام بري بيتيت انسريكايك ام بري ريستينيا دني ام بري

धौन तु बिडाऊ अरे ए नोकना हल्ला नदी तुना तिप थदी तिप ओग बह हदीना तदे तिबे ओग बे उन ओग बे ते सकी रोप इन अमरा दुआ ते तिलह नहीं हुआ शैलिक का भोग कहतीन ओग बे सकरो हिसना ओकना तुम्हारी तिप तुम्हारे तुदाई थाई थी नीन आया आन अरे तू न तू राव तहसीन नी दे न मराकजे वो मुस्तशफाया वो एफे उम बरू एहे ओम बेतीत अरे दोर का सना दे इतनी एफका सगुर तिरगा एन एफका मही तिरगा एन एफका लिफियन एहेन इन बारा एन ओकनो ओ तो न तु एदने तोकन उम बतो गलिब नुकतात व्यफी बे उना वरिब अरे हुगंत अरे यदने नारे मीन का वेर हिमायत कर एहेन तु तो न मुस्तशफा कतियक मराकज कतियक बेतीत तहसीन वम बते तेदेन अरे हिनिन तू न तुनि सरीवत ना ना तु तेदने उत्तु बिडावे तु तू न तुकन तिकतीत का हंकाई बा ए आयो गुबे दई दन्ने का बरुक शलिक को मिसराने उकना बात है काओ हिनिन मिसराने किन सरी ओकना लाने इदे कतीने एक मिसराने ओ किन सरी ओकना अरे आन तुकन मगित तिकती एक मिसराने ओ किन सरी ओकना दाई बदाई ने दोकना तिते न थदी नने तिमबते ओ तुनाती दाई निसरी ओकन ओन हिनिन निसरे कायान ददिस अकै उनसरे कूकन अवल तोंदे तुंदेती फंती कै शुबोबे ओबे नोदोर अरे बेदोर वे न तेफे ते अबाडीने ना ना तु तेंदक तु तु तकत ओन उनसरे कडिस्ती ओदोर बेन ओदोर तित्ते अ तिकनाते इंबतेओ गुबे हने हमना तेफे उत्तुनाती दाय या सगुरतिरगा अवली उत्तु तकत ओन उनसरे ओन ते अ तुबतीते उंगुइसो इनीने तनु वेना बेथिउ हम बता ताकना इस अकीर ना और अरे तुम्हारा आते रबकात इक्वासी उत्तुना ती दाय हिनिन तून तुने सरिवत कस्तु उधायुन ऐन मीनी का दाय दायने तरेनी इमरा दा हुआ तित्ताने तिम बता तिमागन फी हुआ आं तित्ताने ताम अक्तुआ यह दब बीदाय न मी आदि एम बलि बने दोक उत्तुना ती दाय हिनिन दाय था आती बने हरि वोकनाय गरोयोक्षा कुना यरेक्षा कुना निसरिकायक्षा कुना ये गिरमायक्षा कुना देतेक्षा कुना तरतेक्षा कुना उत्तुनाती दाय दाई न निसरी ओकनाय इन इन दे यह दिन नए उगनो कोई दीना अरे मेरे मीनान किताबे हुआ वरे नाय हुआ ऐफे नहीं ओ दी सकना याना उबाकान उक्तेन सकना याना उत्तुनाती दाय तो कनांती वार है ऐफे नहीं मीन का धी वरे है नहीं सकना याना इत्तेन इंबते ना थोई कन्न ना थोई ते कनीनो लेज लेज बित का उगनो कोई ते देन एकता बा अगरी आना बताओ हेनेत अरे सकना याना दकातर हेनेक सकना याना अरकना लमम हेनेक सकना याना बग दीते न निमासुए तू न ना ना तु दीनात सकना या दोन तु बिडाऊ इन्हें दाई न निसरी ओकना दाई था ती शाल लदाते ना तित्ते न था दी नने इंबते उगनो कोई दीना आं तु तुमना आनी देत उंबतो ओगवे बरो सकना याना ककना था ती ते ना तु दीना तिलहन ई भी कतिम नों तेदने था आती तु गाया उंबत योहन नशाते काब अकेन एने से रतोक